0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
2: जी हा 3135525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
1: शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत ना गे मालिक जो महबूब मोहम्मद को लेके खा

आपको समझाता हूँ। जदे पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमाते

नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद, हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई देखी आए जग सारा सफर का बेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असाजे हारिय साईं ताहे नाबाद हाणे इन जो अञाब वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
4: हा गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331252578 6।
4: जी हाँ, 2315525786।
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फैदान चाहे तो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया की दिफाई मुआहदे जो हदफ ईरान न है। ही नेटो मुआहदे जेड़ो है। जेस तई मेंबर मुल्क से हमलो न थो ईरान समेत कें भी मुल्क खिलाफ कार्रवाई नींदी। नेटो मुआहदे की शिक पंज तहत मका मुआहदे में एक बे की दिफा की जमानत डी वही है। नेटो जिया टई मुल्क एक वजारती कमेटी कायम कंदा जो सेक्रेटरिएट सऊदी अरब में होंद। टेक्निकल मामला हल थे बाद मिस्र बे दिफाई मुआहदे में शामिल थी सके थो।

पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ विच में मका मुआदो थियण जी खुशीअ में पाकिस्तान में जश्न। इस्लामाबाद खे टिन्ही मुल्कनि जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल समेत टिन्ही मुल्कनि जे सरबराहनि जूं तस्वीरूं बि लॻल। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ बि तारीख़ी मुआदे ते सयूं करण बाद ॾेह पहुची वियो। पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्कीअ जे सरबराहनि तारीख़ी दिफ़ाई मुआदे ते सयूं कयूं हुयूं। कानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबब टे बार फौत, सत बेहोश। गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबब ॾह भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान पंज वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं टिनि सालनि जो गुलज़ेब ऐं निगरी मुस्कान फौत थिया। गुलज़ार समेत ॿिया इस्पताल में इलाज हेठि।

अगवाणी वेझो घर मां फुर ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सुबह सादिक खोसो में घर मां चोरी ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त हथियारबंद घर में घिड़ी गर्भातियुनि खे जर्गमाल करण बाद तशद कयो। मोटरसाइकिल ऐं ॿियो सामान बि फुरे विया आहिनि। फुर थियल सामान वापसि करायो वञे।

ऐं यमन जे सरकारी फ़ौज हूसियुनि ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। परॾेही ख़बरूं इदारे मूजिबि मारब वारे इलाइक़े में हूसी तनज़ीम इंसारुल्लाह ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई। हूसी बाग़नि जे केतिरा ई ठिकाणा तबाह थी विया। यमन जे बचाउ खाते जो चवणु आहे त हूसी बाग़नि यमन जे मैशियत खे तबाह करे मुल्क में फिरके वारियत खे हथी ॾिनी। संदन हर अगराई जो मोटो जवाबु ॾिनो वेंदो।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
11: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331252578 6।
8: जी हाँ 3135525786।
11: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज

0: मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
3: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301 43 842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
2: जी हा 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

अला मोहब्बत में सावल अबड़ो चए। खास फरमाश रहीम कोरार, मास्टर नूर मामन, मोहम्मद अली कोरार, अली हसन कोरार, शहर सखर का खमीसो लेगारी, अली हसन लेगारी, सदाम लेगारी, लुत्फ ला चन्नई खास फरमाश जो प्यारे प्यारे दोस्त बचल शाह नियाणी का हनीफ मलिक जी खास फरमाश, रफीक लेगारी फरमाश, उनजो फर्जंद सिकंदर लेगारी।

तुर्किया जे परदेही वज़ीर हाकान फैदान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे जो हदफ़ ईरान न आहे, ही नेटो मुआहिदे जहिड़ो आहे। जेसिताईं मेंबर मुल्क ते हमिलो न थींदो, ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहिदे जी शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई आहे। नेटो जीअं टेई मुल्क हिक वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थी सघे थो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान। अॼु पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इन इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाउनि में पाणी जे वहिकिरे में वाध जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। तंगवाणी वेझो घर मां फुर ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सादिक कोसो में घर मां चोरी ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे बंदि करे छॾियो। ॻोठाणनि जो चवणु हो त हथियारबंद घर में दाख़िल थी घरबातियुनि खे यरगमाल करण बाद तशदुद कयो। मोटरसाइकिल ऐं ॿियो सामान बि फुरे विया आहिनि। फुर थियल सामान वापसि करायो वञे। घोटकी भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी तदफ़ीन पुलिस चढ़ायूं। अशरफ अली ऐं शाबान घोटो जी जनाज़ निमाज़ ॻोठ गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वई। हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि भाइरनि फयाज़ ऐं वसीम घोटो जो सखर इस्पताल में इलाज हलंदड़। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे ॻोठनि में चढ़ायूं। जवाबदार घर खाली करे फरार। कानपुर भरिसां ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि फौत थियल टिनि ॿारनि जी तदफ़ीन। माहौल सोगवार मदनी पाड़े में फौत थियल गुलज़े मुस्कान ज़ैन कुरेशीअ जा मड़ खॼण वक़्तु रोजराड़ो मची वियो। फौती ॿारनि जे जनाज़ निमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि जी शिरकत। टिनी मासूम ॿारनि जा मड़ सवें आले नखियुनि सां मिटी मां हवाले।

ऐं फैज़गंज मां हिकु हफ़्ते खां गुम जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक। वारसनि जो चवणु आहे त सत वरनि जी काजल खे गुम थींदे हफ़्तो थी वियो। शक आहे त ॿारडीअ खे अगवा कयो वियो आहे। एस एस पी खैर

0: डीआईजी सखर नोटिस वी बाली बाजियाब कराई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GAFM 90.4। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो, छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
1: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।

0: 0331257786।
1: जी हाँ, बुड़ी 331-25-25-786।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
7: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: तेहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाह हुर्मुज़ न खुलंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु, ईरानी बंदरगाहुनि जी नाकाबंदी ख़तम करणु, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे। सफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मफ़ाहमत ते मजबूर कयो, मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर मसूद पशेकियान तहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त नामे तहत अमरीका खे आबनाह हुर्मुज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जी गडि॒यल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। हा, भञकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद्द अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईराननि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। ॾोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवियो तब्दील न थियो आहे। तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर हाकान फैदान चयो आहे त पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जी दिफ़ाई मुआहिदे जो हदफ़ ईरान न आहे। हीउ नेटो मुआहिदे जहिड़ो आहे। जेसिताईं मेंबर मुल्क ते हमिलो न थींदो, ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहिदे जे शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई आहे। नेटो जीअं 3 मुल्क हिकु वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थी सघे थो।

पाकिस्तान खिते में अमुन ए तहफ़ जो ज़ामिन है। पेट्रोलियम वाले वजीर अली परवेज मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मक्का गडियल दिफाई माहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख़ुर है। पाकिस्तान की हथियारबंद फौज की महारतुन की दुनिया शाहिद है। पाकिस्तान मुआशी मैदान में भी कामयाबी हासिल कर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन में बरसात जो इम्कान। अज पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मथान इलाकन कश्मीर के कुछ इलाकन में किथे तेज तो किथे हल्की बरसात पैजी सके थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क के वन दरियान में पानी के वहकरे में वाद जो इम्कान जाहिर कर छो। तंगवाणी भरसा घर में फोर खिलाफ़ गोठानन जो इंडस हाईवे ते धरणो। गोठ सादिक कोसो में घर में चोरी खिलाफ़ लाशारी बिरादरी के मानन पारा इंडस हाईवे ते धरणो लगाया वो। गोठानन जो चवण है हथियारबंद घर में दाखिल थे घर बातन के यरगमाल करण बाद तशद्दुद कयो। मोटरसाइकिल ए बो सामान खणी फरार थी विया। कड़ी खैरों में वधंदड़ बदमन खिलाफ रावासी सरापा एहतजाज बणजी वया। सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। चोरी ए फुर्जे वधंदड़ वारदातन खिलाफ शहर इंसाफ एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो हयो। अगवाणन जो चवण हो तो सहाफी गुलाम मुस्तफा जमालिया का फुर थियल रकम वापस कराई वही। घोटकी भरसा गुजरल ढी कतल थियल बिन भाइरन की आलिन अखियन से तदफीन पुलिस जो चढ़ायू। अशरफ ए शाहबान घोटो की जनाजे नमाज घोट गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वही। हमले में जख्मी थियल बिन भाइरन फयाज ए वसीम घोटो जो सखर के अस्पताल में इलाज हलंदड़। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए पुलिस के कच्चे के गोठन में चढ़ायू। जवाबदार घर खाली कर फरार। कानपुर भरसा जहरीलो खाधो खाने सबब फौत थियल टिन बार तदफीन माहौल सोगवार बणजी वो। मदनी पाड़े में फौत थियल गुलजे मुस्कान जैन कुरेशिया के मड़ खजन वक्त हर अख आली। फौती बारन की जनाज नमाज में सियासी समाजी अगवान शहरों की शिरकत।

0: फैज़गंज में एक हफ्तो अग गुम थियल मासूम निगरी जो पतो न पयो। वारसन पारा अगवा जो शक जाहिर। वारसन जो चवण हो तो सत वरन की काजुल के गुम थींदे हफ्तो थी वयो। बाली के अगवा कयो वियो आहे। नोटिस वठी बाज़ियाब कराए वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोती जड़ो दानो छटाई करण में आसान। बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: थम थम थम किताबे लेके निकले हम। अम्मी ने कहा ना रुकना तुम। रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।
4: जब स्कूल जाएंगे डॉक्टर बन जाएंगे। सोचो अब्बा सबका नाम रोशन कर।
5: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: दिफाई मुआहदे में शामिल थी सके तो पाकिस्तान खिते में अमुन ए तहफ़ुज़ जो ज़ामिन आहे पेट्रोलियम वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त मका गडियल दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख़ुरु आहे पाकिस्तान जी हथियारबंद फ़ौज जी महारतुनि जी दुनिया शाहिद आहे पाकिस्तान मुआशी मैदान में बि कामयाबी हासिल कंदो हुकूमत अवाम खे पेट्रोलियम शयुनि में सब्सिडी ॾिनी आहे तहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाए हुर्मज़ न खोलियो वेंदो ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करणु ईरानी बंदरगाहुनि जी नाकाबंदी ख़तम करणु पाबंदियुनि में नरमी जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियणु ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करणु शामिल आहे सफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मफ़ाहमत ते मजबूर कयो मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त नामे तहत अमरीका खे आबनाए हुर्मज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जी गडि॒यल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे हा भञकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद अमल ॾियणो पियो दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईराननि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे ॾोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवियो तब्दील न थियो आहे ईरान बि तयारु आहे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान अॼु पंजाब बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाहनि में पाणी जे वहिकिरे में वाध जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो ॿारणनि जी अॻवा ऐं पाणी खोट ख़िलाफ़ मेहण में अवामी पोरियत तहरीक जी इहतिजाजी रैली धरणो कारकुननि दुआ जा हथ चौक खां घंटा घर ताईं प्यादल मार्च करे धरणो हयो अॻवाननि जो चवण हो त सिंधूअ ते कैनाल अॾण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो सिंध में ॿारनि जी अॻवा जे वधंदड़ वाकियनि जो नोटिस वठी मुक़बी ॿारनि खे बाज़ियाब करायो वञे

कड़ी यासीन में आसिफ पठान के कातलन की गिरफ्तारी लाए शहर में शटरबंद हड़ताल धरणो शहरी समाजी इतिहाद ए मेहरान शॉपकीपर्स के सद से दखण नाके का रैली कड़ी वही मुजाहरीन पारा अगूणे एसएचओ हिदायतुल्ला निंदवानी ए बेन खिलाफ सख्त नारेबाजी आला अख्तियारन का कतल में मुलव जवाबदार के गिरफ्तार करने का मुतालबो। इंडस हाईवे से ओवरहेड साइन बोर्ड हादसन जो सबब बनल मंजूराबाद में रहवासन जो धरणो गोठाणन इंडस हाईवे से एहतजाजी मुजाहरों कर धरणो हणी रोड ब्लॉक कर छोड़ो ट्रैफिक मुअत्तल रहवासन जो चवण हो तो ओवरहेड साइन बोर्ड मौत जो राखास बणजी वो है गाड़ियों के छतन से वेठल मुसाफिर फौत थी वन था टिन महीन दौरान टे मुसाफिर ओवरहेड साइन बोर्ड से टकराई हयाती वजाए वेठा अख्तियारियों नोटिस वी मौत जो राखास बणल ओवरहेड साइन बोर्ड हटाए इंसानी जानू बचाई।

टंगवाणी वेझो घर मां फुरक खिलाफ गोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। गोठ सादिक लाशारी में घर मां चोरी खिलाफ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि पारां इहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। गोठाणनि जो चवण हो त हथियारबंद घर में दाख़िल थी घरभातियुनि खे यरगमाल बणाए फुलुट करण बाद फरार थी विया। कड़ी खैरो में वधंदड़ बदमनी खिलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज बणियल। सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। चोरी ऐं फुर्जी वधंदड़ वारदातुनि खिलाफ़ शहरनि सहाफ़ियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। रहवासियुनि जो चवण हो त सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा जमालीअ खां फोर थियल मोटरसाइकिल समेत वारदातुनि जो नोटिस वरितो वञे। बदमनी सबबि परेशान आहियूं। शहर अंदरि वधंदड़ बदमनी ते कंट्रोल कयो वञे। घोटकी भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी आलिन अखियुनि सां तदफ़ीन। पुलिस जूं चढ़ायूं। अशरफ ऐं शाबान घोटो जी जनाज़े निमाज़ ॻोठ गुल मोहम्मद घोटो में अदा कई वई। हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि भाइरनि फयाज़ ऐं वसीम घोटो जो इलाज हलंदड़। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे ॻोठनि में चढ़ायूं। ड्रोन कैमरा ज़रिए बि कार्रवाई। जवाबदार घर ख़ाली करे फरार। ऐं खानपुर भरिसां ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि फौत थियल टिनि ॿारनि जी तदफ़ीन। माहौल सोगवार। मदनी पाड़े में फौत थियल गुलज़ेब मुस्कान ऐं ज़ैन कुरेशीअ जा मड़ खॼण वक़्तु घर में कोराम। फौती ॿारनि जी जनाज़ नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि ऐं शहरनि जी शिरकत।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125257 86
8: जी हाँ 2315 5786
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

तुम्हारी उम्मीद और मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद और मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनने दंदड़ तमाम खूबसूरत मासूमई सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलामुअलैकुम। पुरकुलो दुआ के संबंध है चादो की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नीचे चाहते समय से आसमात जिंदगी से मौत तक सांस तार तक उनसे खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब आप सुन रहे हैं लाड़काना के लाइव स्टूडियो से हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती की जमानत है जनाब। अगर आप हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकेंगे बल्कि आप अपनी खूबसूरती को जो है ना वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी के साथ साथ आपको जो खूबसूरती मिल रही है उस खूबसूरती को अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वो हमेशा हमारे पास मौजूद रहे और कभी भी ऐसा वाला सीन न बने कि हम ऐसे कोई प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो कि हमारी स्किन को मजीद खराब कर दे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको बताया जाएगा प्रोग्राम के अंदर कि आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को महफूज भी कर सकते हैं, खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमेशा के लिए खूबसूरत भी बन सकते हैं। बिल्कुल सुना, तो ये सब कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, कब होने वाला है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी, जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और जी, यहाँ पर जितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाएगा। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे, आपको बताएंगे कि आपका हमारे साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले हैं। और इन 2 घंटों में बिल्कुल जी, हम आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज अली रे सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 सुल की समान लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 सुल की समान लाते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा कलाम सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

0: डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
5: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03132525786।
10: जी हा, 2315-2575-786।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लाजमी कीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों की खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान ये तो मजे ही आ गए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही जनाब इन्हें तैयार किया गया है। आप लोगों को बताते चले तो यहाँ पर बहुत सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल रहा है जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, व्हाइट एज फेस वॉश, व्हाइट एज ब्यूटी सोप, व्हाइट एज लवली क्रीम एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब, व्हाइट एज का लोशन अवेलेबल है। उसके अलावा व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशन अवेलेबल है जो कि मुख्तलिफ 3 अलग फ्लेवर्स के अंदर पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमें ये वाले प्रोडक्ट की जरूरत है, लाइक आप नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा सा सोप लगाना है तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो सोप आता है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं, व्हाइट एज का फेस वॉश आपको मिल रहा है। ओके जी, उसके अलावा अगर आप कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब भी आपके लिए अवेलेबल है। ये तमाम प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क किया जाता है आपकी स्किन के ऊपर वो आप लोगों को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं कि जब पहली बार संडे आया होगा तो कैसे पता चला होगा कि आज संडे है, क्योंकि भाई पहली बार आया था और पहली बार ऐसा होता कि दिनों के नाम भी नहीं होते थे, ऐसे पता भी नहीं होता था लोगों को। ऐसे जो लोग बोल रहे हैं ना कि बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे, छुट्टी थी बच्चों की, तो उस टाइम बच्चे भी स्कूल नहीं जाते होंगे। पहली बार संडे आया था, सोचो पहली बार संडे आया था तो उस टाइम कैसे पता चला होगा कि भाई आज संडे है। तो जल्दी से बताइए हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और उसके अलावा जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास लाते जाइए। फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम होता है, तो जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और इसी के साथ साथ मुझे बताइए कि आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए या फिर अभी तक नहीं। अवेलेबल हुए तो बहुत बढ़िया, परचेज कीजिए, नहीं तो फिर आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 और उसके अलावा दूसरा नंबर है 03-27-38-4309। ये नंबर्स आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं एंड डी स्किन के भी तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। तो बिल्कुल सी बात यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते चले। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए बहुत एक अच्छी सी क्रीम साबित होने वाली है, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा वाला जलवा है। तो आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा जो कि एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है। ये तमाम चीजें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है, तो इसका भी कोई टेंशन नहीं कि भाई आप लोगों की स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल अज़ा ऐड किए गए हैं। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को خوبصورتی اور نکھار دیتی ہے اور ایک ایسی بہترین بیوٹی کریم ہے یہ آپ کی جلد کو نرم ملائم اور تر و تازہ بنانے میں بھی مدد دیتی ہے اور وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال آپ کے چہرے کی جو خشکی ہوگی داغ دھبے ہیں بیرونقی ہے سب چیزیں کم ہو جائیں گی جبکہ آپ کی جلد زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو وائٹ ایش بیوٹی کریم میں شامل ہے جناب خاص اور خصوصی اجزاء جو کہ آپ کی جلد کی حفاظت کرتے ہیں قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں اور روزانہ استعمال سے آپ کے چہرے کو فریش اور خوبصورت اور پرکشش لک بھی دیتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے بہت ہی بیسٹ سا آپشن آپ کے پاس موجود ہے تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال لازمی کر کے دیکھیے گا اوکے جی اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو وائٹ ایش بیوٹی سوپ بھی مل رہا ہے اور وائٹ ایش بیوٹی سوپ تو بھائی کامن ہی آپ گھر کے سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی سوپ کو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور بہت ہی بیسٹ کوالٹی کا والا سوپ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سوپ کو آپ جیسے یوز کرتے ہیں ویسے یوز کریں گے سوپ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش کا فیس واش بھی آپ کو مل رہا ہے اگر آپ ایسا والا سین بنا رہے کہ ہم نے فیس واش کرنا ہے تو وہ وائٹ ایش فیس واش سے آپ اپنا فیس واش کریں گے باقی اگر آپ نہانا چاہتے ہیں آپ اپنی باڈی پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ اپلائی کرنا پڑے گا تو یہ وہ تمام پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ ایزیلی کہیں سے بھی جا کر پرچیز کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست کوالٹی کے پروڈکٹس ہیں آپ بس اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جائیے وہاں سے نام لے کر نہ طلب کیجیے نہیں ملتے تو جو نمبر آپ کو بتایا اس کے اوپر رابطہ کیجیے گا اور آپ بھی استعمال کیجیے وائٹ ایش بیوٹی کریم وائٹ ایش فیس واش اینڈ وائٹ ایش بیوٹی سوپ تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ آپ کے پاس اچھے والے پروڈکٹس موجود ہیں اوکے جناب تو یہاں پر گانے بھی آپ لوگوں کو سنائے جائیں گے گانے بھی ہماری لسٹ میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ پہلے ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا گانا سن لیتے ہیں آپ کے میسیجز بھی ہیں ان کی جانب بھی آتے ہیں آپ ایسا کیجیے پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے

ओके जनाब, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल्लाह रखियो मेमन भाई और मेरे बेटे हैं खुर्शीद अली सनाउल्ला अताउल्ला अली डिनो अली शेर और मोहम्मद हसन मेमन और क्यूट बेबी फातिमा बतूल भी आपके साथ हैं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को वेलकम कहा जाता है। अल्लाह रखियो मेमन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और मकसूद मला हमारे साथ है। गुड आफ्टरनून सिद्रा मुस्कान। डी स्किन क्रीम बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। यकीन करो अब तो हमें कोई बहुत बढ़िया, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और इसी के साथ साथ आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा। रसूल अब्बासी आब्दुल सिंह शम्बानी भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक मुझे सैटरडे ने पहले ही बता दिया था कि कल संडे आने वाला है, तैयार रहना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चाचा खालिद तमहा मौजूद है पैनल ते, बिल्कुल तमाम सी पसंद जो गानो हलायो वींदो। मकसूद मल्हा कहते हैं जवाब, जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल गए होंगे तो वो नहीं गए होंगे तो पता चल गया होगा आगे संडे में बच्चे कैसे जाएंगे। वो तो बहुत पहले की बात है ना, स्कूल भी नहीं बने होंगे तब मुझे ये लगता है। तो जब पहली बार संडे आया था तो कैसे पता चला होगा। अच्छा साहिमा मीर हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम की थी माशाल्लाह सिद्रो, एक शो और करती हो वो भी शाम को, गुड गुड। वैसे वो शो कैसा होता है, क्या होता है उस शो में? 5 बजे आई एम फुल बिजी ऑन ड्यूटी, लेकिन वो शो होता भी जस्ट लाड़काना में है तो आना पड़ेगा आपके सिटी। जी बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए लाड़काना में आप घर ले लें ताकि आप लोगों को हमारे शो सुनने में आसानी हो जाए। वैसे वो भी स्पॉन्सर्ड शो है और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा खालिद कहते हैं संडे फर्स्ट टाइम जब आया था तो हिस्टोलॉजी में उसको डे ऑफ सन कहा गया था। योर टॉपिक आंसर ओके। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है साइमा कहती है जी अल्लाह करे तुम जल्दी पुप्पो बन जाओ, वो भी रियल वाली। बाकी ड्रामा में तो बुआ को बुरा दिखाते हैं, ऐसा होता नहीं, हम जान देते हैं सुकून वाली। अच्छा हाँ नहीं, हम पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है अपनी पुप्पियों को तो बस एक दो ही अच्छी है, बाकी तो अल्लाह पना रहे। अच्छा ये हमारे साथ है आरजे सिद्रा जी, सलाम कबूल करे मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श खान से गुड मौजूद है। ओके जी भाजू मोहब्बतान प्रोग्राम बुधो पया मुखे डियो हाल अहिवाल तव्हांजे गोठन में तव्हांजे सिटीज में वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलन था कोन? ओके जी क्या बात है, घोटे जी शादी कराई सी। मत आना मनो आने वाली फायजा वाली आई तो ढो भलो गानो गाईंदी।

वाह साईं वाह वाह साईं वाह, ॾाढो भलो गानो ऐं ॾाढा भला प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कयो पिया. वाइट एश ब्यूटी क्रीम आहे, वाइट एश ब्यूटी सोप आहे, वाइट एश जो फेस वॉश आहे ऐं वाइट एश जी लवली क्रीम बि अथव. बाबा ॿुधायूं था ॿुधायूं था, इन जो छा कमाल आहे. पर थोरो खिल त सही. अजो फज़ीला सिंधी मर सद मौजूदी, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और बाजी को, ऑल स्वीट सिस्टर्स को. कहती आई एम नाराज, व्हाई यू नाराज, व्हाई? अरे भाई मान जाओ अब. वासा भाई हमें सुन रही है, थैंक यू वासा भाई. नदली कहती है कि मैं भी आ गई, वेलकम. तो हाँ जी, वेलकम किया जाता है हमारी प्यारी निदड़ी को. और मैं ठीक हूँ, तुम बताओ. चाचा खालिद कहते हैं कि मोहब्बत में हर्फ बा हर्फ मुझे मांगना नहीं आता, मैंने अदाबे दुआ से बहुत आगे तुझे चाहा. वाह वाह.

मीरपुर खास में प्रोग्राम नहीं सही चल रहा है भाई, मीरपुर खास वालों सही से प्रोग्राम कनेक्ट किया करो, बहुत बुरी बात होती है। अच्छा रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, रशीद खोसो हैदराबाद से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहा जाता है। जाम तालिब सोलंगी हमारे साथ है, मोरो का तमाम से प्रोग्राम बुधो पयास शमन जो गानों बिल्कुल तमाम की बुधरायू था, थैंक यू तमाम से गड़ा है। अच्छा ये मीर एजाज नूनारी भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अच्छा निदली के दी टॉपिक मुखा जोर नकर बाबा नकर। अच्छा प्यारी मोमना के दी टॉपिक क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है ना तो पता चल जाता होगा कि संडे है और मैं मोरो से आपका शो सुन रही हूँ, क्या बात है मोमना, आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू आप हमारे साथ हैं स्वीटी। अच्छा वासु भाई कहते हैं टॉपिक के ऊपर ना आपने जो जवाब दिया है वो बहुत ही वखरा सा जवाब है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया कहती यहाँ पे ये पोइट्री है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द निगाहे जमाना है, वाह वाह वाह वाह, दर्दे दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं। हाँ बाबा खिलो खिलो छो तवां मूड खराब करे वेठा आयो, उन खा अलावा अगर तवां मूड खराब करण सा गडो गड पांची स्किन भी खराब करे वेठा आयो त इए न कियो बाबा, इए न कियो, सोणा सोणा थियो आई, सोणा सोणा थियण सा गडो गड तवां वट वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद आहिन, आई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवां के बिल्कुल खबर आहे, अत जेतरा भी प्रोडक्ट्स आन हु सब तमाचे इसके जे मुताबिक तैयार थे लायन, आई वाइट एज लवली क्रीम जे अगर गाल कई वने तो वाइट एज लवली क्रीम एकड़ो एड़ो फार्मूलो आए एकड़ी एड़ी फेयरनेस क्रीम आए। अच्छा फेयरनेस क्रीम जो जडे में जिक्र इना त या गाल त वहां के बिल्कुल खबर हुंदी त फेयरनेस क्रीम जका हुंदी वो सबनी मानो चलाए हुंदी आ है, जी सा नाइट क्रीम हुंदी आ तो नाइट क्रीम के टीनएजर्स मानो लगाए सगन था, एजड लगाए सगन था, पर बचड़ा बार न था लगाए सगन, तो बिल्कुल अगर असा फेयरनेस क्रीम जो जिक्र कयूं त फेयरनेस क्रीम एक ओ प्रोडक्ट हुंदो आ जेके तमा घर जा सब भाती लगाए सगो था, यानी कि बचड़ा भी लगाईंदा बार भी लगाईंदा आई कुराड़ा मायो जवान हर को लगाई दो, तो वाइट एज लवली क्रीम एकड़ो ओ प्रोडक्ट आहे जेको न सिर्फ इन लाइ तैयार कयो आहे त बाबा तवां के सिर्फ फेयरनेस मिले, तवां के सिर्फ निखार मिले, बल्कि वाइट एज वारन एतरो तवां जे स्किन जो ख्याल कयो आहे, तो वाइट एज लवली क्रीम जेका ट्रीह विटामिन्स जे कैप्सूल सां तैयार थियल आहे, उन खां अलावा जेको आहे जे अंदर सनस्क्रीन भी एड कई वई आहे, सनस्क्रीन एड करण जो मतलब ऐं मक़सद इहो आहे त तव्हां जी स्किन ते जेका खूबसूरती आहे उहा त तव्हां खे मिले पर तव्हां जी स्किन ते जेको नुक़सान पवंदो आहे न सिज जे असर जी वजह सां, सिज जा जेके किरणा हूंदा आहिनि तव्हांजी स्किन ते नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, त उन्हनि खां तव्हांजी स्किन खे जेको आहे उहो हिफ़ाज़त मिले, सो वाइट एज लवली क्रीम तव्हां लॻाए सघो था बाबा, तव्हां ऑफिस वञो था, कमकार कयो था कोई, तव्हांजी जॉब आहे, तव्हां पढ़ण वञो था, तव्हां पढ़ाइण वञो था, तव्हां कोई भी कमु कयो था, त बसि तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां हीअं रेडी थी वेंदा ऐं तव्हां खे ख़ूबसूरती बि उहो हीअं मिली वेंदी, सो कोई फंक्शन आहे, को पार्टी आहे, किथे तव्हांखे शादी ते वञिणो आहे, गर्मी आहे, तव्हां मेकअप नथा लॻाए सघो, तब बाबा तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था, ॻाल्हि अथव सिधी, ठीकु आहे, मञण मुरादवाण आहे। उन खां अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब बि आहे जेको तव्हां एक्नी खे ख़तम करण लाइ लॻाए सघो था, पर न सिर्फ़ एक्नी, तव्हांजे चहिरे ते एक्नी आहे, एक्नी जा निशान आहिनि, तव्हांजे चहिरे ते कोई चोट जो निशान आहे, को सड़न जो निशान आहे, को कट जो निशान आहे, केॾा बि पुराणा, केॾा बि ज़िदी निशान अगरि तव्हांजी स्किन ते मौजूदु आहिनि त बसि तव्हां सिर्फ़ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु कयो ऐं इस्तेमालु करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे अंदाज़ो लॻिजी वेंदो त बाबा असां वाह खे ॾाढी भली शइ इस्तेमालु कयूं पिया, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको तव्हां इस्तेमालु करे सघो था, तव्हांजी स्किन ते जेको एक्स्ट्रा ऑयल हूंदो आहे उहो बि ख़तम थी वेंदो ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा लश पश थी वेंदो, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे तव्हां कीअं लॻाईंदा छो त लॻाइण जा तरीक़ेकार थोरा तव्हांखे ॿुधाइण ज़रूरी हूंदो आहे, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे तव्हां ईअं लॻाईंदा त तव्हां सुबुह जो बि लॻाईंदा ऐं तव्हां राति जो बि लॻाईंदा, लॻाइण खां पहिरियां तव्हांखे पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे, तव्हां वाइट एज जे फेस वॉश सां या वरी साबुण सां पंहिंजो फेस वॉश कंदा, उन खां पोइ चङी तरीक़े सां पंहिंजे फेस खे सुकाईंदा, हथनि खे बि तव्हां चङे तरीक़े सां क्लीन रखो, उन खां पोइ जिते जिते निशान आहे, जिते चोट आहे, जिते सड़न जो निशान आहे, उते तव्हांखे डॉट डॉट करे लॻाइणो आहे, पूरे पंहिंजे फेस ते न लॻाइजो, पूरे फेस ते लॻाइण वारो प्रोडक्ट न आहे, जिते जिते तव्हांखे प्रॉब्लम आहे उते उते लॻायो ऐं लॻाइण खां पोइ तव्हां बसि छॾे ॾियो, सुकून अची वेंदो, तव्हांखे थधो थधो फील बि थींदो ऐं तव्हांखे मज़ो अची वेंदो ऐं कुझु ई ॾींहंनि खां फौरन बाद तव्हां महसूसु कंदा त बाबा हिते को निशान हूंदो हुयो, ॾिसो ॾिसो हाणे कोन अथव, सो इहो कमाल आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो। बिल्कुल ये सवाल
सवाल पुछो आज मां अवां खां मुखे बुधायो तवां जदी पहरियो संडे आयो हो पहरी मर्तबा संडे आयो हो इन दुनिया में पहरियो दफो संडे आयो त कीअं खबर पई त अॼु संडे आहे।

0: अब आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, कंजूसियां नहीं बनती यहां पर। अशफाक उड़ो कहते हैं टॉपिक संडे मोकल जो डे आए इन करे खबर पवे थी ता जो संडे आए। अरे बाबा पहरे संडे की गाल हले पई थे। दर्द दिल कहती है मैं और अलीसा शो सुन रही है, एंजॉय अमेजिंग शो एंड ब्यूटीफुल वॉइस माई जानी माशाला, थैंक यू सो मच प्यारी दर्द दिल और अलीसा। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मैं बुरा नहीं, मेरी भी कुछ कहानी है। ये जो बदला बदला सा लगता हूँ ना, ये अपनों की मेहरबानी है। गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला, लेकिन अपने तो अपने हैं, अपनों से क्या मिला। आईली सब फटिया बैठा है। अच्छा सादिया कहती टॉपिक संडे का, अच्छा पता नहीं क्या कह रही है। ओके जी हैप्पी कहती है आरजे, मुझे तो पता नहीं पहले संडे आया था तो कैसे पता चला था। अखलाक भाई हमें सुन रहे हैं, नाइस यो, थैंक यू अखलाक भाई। और प्यारी मोमना कहती फायजा का गाना, फायजा जो गानो हाने बुधो सी सोनी, थैंक यू तुम्हारे सगड आयो। किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा, आज स्मार्ट बिस्तर में या तबियत थोड़ो नाजुक है, नाजुक या नासाज हो, तबियत जो ख्याल रखो बाबा, तबियत जो ख्याल रखो। चवंदा आहिनि न जीउ ख़ुशि त जहान ख़ुशि थियो। अच्छा जल्दी जल्दी ठीक थी वञो, डॉक्टर खे ॾेखारियो, दवा बवा खाओ, गोरियूं खाओ, गोरियूं। अच्छा हुन खां अलावा तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि कजो, सही आहे। अच्छा सादिया कहती आप ही आज किसकी शादी करवा रही, घोट जी शादी कराई सी, घोट जी। आदल कहते हैं जवाब पहली बार जब संडे आया था तो पता ऐसे चला बैंक बंद थी। अच्छा माना यहाँ गाल हुई, सही सही। ओके सो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। सो डिंगोवा बाबा गोट तू जो जो उनमें व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन है के जल्दी तमाम अवेलेबल करायो, खूबसूरती जो ख्याल रखो, ऐं सोना सोना थी वञो। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो, उनखां पोइ जल्दी मोटी तव्हां ॾिठो था 9:30 वजे हिते वेठा हुजो, मां उही वञी उही मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: इट्स 2 PM

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सिक्योरिटी जरिए मुजिब सिक्योरिटी फोर्सेज मस्तोंग बोलान वाशक आवरान सिब्बी खुशदार हरनाई नौशकी में कार्रवाई दौरान 15 दहशतगर्दन के मारे छो कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद भी हथ सिक्योरिटी फोर्सेज पारा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तीन ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 तहत कार्रवाई बिना फर्क के जारी रखने असम तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फैदान चयो तो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया के दिफाई मुआहदे जो हदफ ईरान न है ही नेटो मुआहदे जड़ो है जेस तई मेंबर मुल्क ते हमलो न थो ईरान समेत कें भी मुल्क खिलाफ कार्रवाई न थी नेटो मुआहदे की शिक 5 तहत मक्का मुआहदे में एक बे की दिफा की जमानत डिनी वही नेटो जिया टई मुल्क एक वजारती कमेटी कायम कंदा जैसे सेक्रेटरियट सऊदी अरब में होंद टेक्निकल मामला हल थे बाद मिस्र भी दिफाई मुआहदे में शामिल थी सके तो पाकिस्तान खिते में अमुन ए तहफुज जो जामिन है पेट्रोलियम वाले वजीर अली परवेज मलिक चयो तो मक्का गडल दिफाई मुआहदो पाकिस्तान लाए फखुर जड़ी गाल है पाकिस्तान की हथियारबंद फौज की महारतुन की दुनिया शाहिद है पाकिस्तान मुआशी मैदान में भी कामयाबी हासिल कर तहरान जा 6 मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाह हुर्मुज़ न खोलियो वेंदो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्कदर चयो तो मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ईरानी बंदरगाह जी नाकाबंदी ख़तम करण पाबंदियुनि में नरमी जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे सफारतकारी अमरीका के ईरान से मफाहमत से मजबूर किया मुआहदे से पहुंचने लाए हाने सुठो वक्त है ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो तो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त नामे तहत अमरीका के आबनाह हुर्मुज़ बाबत ईरान ए ओमान की गडियल गाइडलाइंस से अमल करण घुर्जे हा भंजकड़ी की सूरत में ईरान के पांजो रद्द अमल डेणो पो दुश्मन जाने तो सिर्फ जंग से ईरान के हुक्म मन मजबूर नो करे डोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान से अजा तवैयो तब्दील न थो है

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दानो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली से औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
3: जी हा 2315525786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

xin được hiện hiện White Ish and D is in beauty shoe. बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताइए, और इसी के साथ साथ आपके एरिया में मिलते हैं नहीं ये भी बताइए। और जनाब साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने अभी अभी हमारा प्रोग्राम सुनना स्टार्ट किया, या फिर अगर आप स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, तो सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं, जब पहली बार संडे आया होगा तो कैसे पता चला होगा कि आज संडे आ से जल्दी जल्दी से बताइए, और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और कमर्शियल तो वाकई कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, मैं सोच रही थी खत्म होगा, लेकिन ये इतना लंबा चला के आए हाय मैं ही बोर हो गई। और तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बहुत सारे आपके पास जो है ना वो वजूहात मौजूद होंगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से सबसे पहले जो है ना ये बात आप सुन ले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है और मकसद ये होता है कि आप लोगों के चेहरे को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपके चेहरे की हिफाजत भी की जाए। तो जिन लोगों के चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, और प्रोडक्ट ना लगाने की वजह से उनकी स्किन जाहिर सी वो खराब हो जाती है, तो उस खराब स्किन को रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए, और अपने खूबसूरत से चेहरे को हमेशा खूबसूरत रखने के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा अरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई। और आप तमाम इन चीजों को सुनकर ये लगता होगा कि भाई ये तमाम चीजें हमारी स्किन के लिए क्या जरूरी है, तो बिल्कुल जी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये तमाम चीजें आपकी स्किन के अंदर तक जाती है तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द को खूबसूरत और हिफाजत के लिए तैयार की गई है, यानी कि आपके चेहरे को खूबसूरती भी मिलती रहे, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे। और एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये आपकी जिल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और ताजा रखने में भी मदद देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द पर जितने मसाले वो सारे दूर होते जाते हैं, आपका चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब जितनी सारी चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, और आपको जनाब इतना खूबसूरती का एहसास मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि जब आप कुछ ही दिनों के बाद अपना चेहरा देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि वाकई भाई आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिसके इस्तेमाल से आपकी खूबसूरती में ना चार चांद लग चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और डी स्किन फेस वॉश के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि इतना प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ लगाते हैं तो आपको सच बताऊं तो अमीरों वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और एक मजे की बात ये भी आ जाती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो खूबसूरती मिलेगी, आए हाय आप इतना प्यारे हो जाएंगे, आप इतना सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि भाई हम पहले से तरह की बात क्यों नहीं मान रहे थे। तो खैर अभी भी देर नहीं हुई, आप अभी भी हमारी बात मान सकते हैं। तो बिल्कुल डी स्किन फेस वॉश का आप यूज करेंगे, और डी स्किन का फेस वॉश जो है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्लीन करता है और डीपली आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो जल्दी जल्दी से आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कीजिए, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन फेस वॉश दोनों डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन दो दिन बाद आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कीजिए अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं।
तो जनाब डायल कीजिए 033-2738-4309 योर नंबर आ है 03-12-50-25907 जल्दी से नंबर से राबतो कयो ताकि तमाम जी करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल थी वजे अच्छा इतने तमाम सोनो गानो हलायो आ ही गानो आदिल के डेडिकेट आए छो तो आदिल तमाम जो गानो चयो न मुख्य ख्याल आया तो उन बदली असा ही गानो बुधन घुर्जे

करोगे जो बिल्कुल आपके मैसेजेस हैं, तो आपके मैसेजेस की जाने भी आ जाते हैं यहाँ पर। आप लोग हमें सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा लाजमी। अच्छा, ये हमारे साथ आशिक अली मल्हा फ्रॉम बकर अबरो। सलाम जी, हमें कोई अपनी पसंद का गाना सुनाएगा, डेडिकेट ऑल सुनने वालों को और आपको भी। थैंक यू सो मच आशिक अली मल्हा भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। राशिद अवान हमारे साथ है फ्रॉम मेहरापुर से, कहते हैं सबसे पहले सात दिनों के नाम जब मैंने रखे थे तो उसके बाद जिस दिन संडे आया सबको पता चला कि आज संडे साहब आ चुके हैं। सही है भाई। जो आपने लिखा है सबको सलाम, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। और ये मौजूद है सलाम बाजी सिदरा जुल्कनेन खोड़ो हमारे साथ है फ्रॉम आखिल, कहते हैं दर खड़कियों बाहर निकतम तो हमरा बाहर बीठो हुयो, पुछो मास बुधाए उठो मास केर बा बुधाए वयो मुझो नालो आचर थई। मना ये खबर पे अब सही सही सही।

भक्तली सियाल भाई में सुन रहे हैं वेलकम कहते हैं किशोर भाके ते अज मुजो खंड जो जहाज त कोन बुडो आ पर तबे जो जहाज बुडी वयो आहे संडे तवा जो मतलब ज्ञान थी वयो आईली दुख थियो जेतरी कहती है उसको बोलो नाराज ही रहो क्योंकि तुम वैसे किसी को नहीं मनाती हा की कद तवाला जेको नाराज थींदो उनखां उल्टो नाराज थी वेंदी आहे वञी मनायो हाणे अच्छा ये स्मार्टू गोपांग हमारे साथ कहते हैं वाह वाह जबरदस्त सॉन्ग थैंक यू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं सिद्रा हां जी बोले

करिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के भी याद रखो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के भी इस्तेमाल कंदा रहो उन खा अलावा एकड़ो बियो भी गानो सा लिस्ट में आ ही गानो भी बुदंदा सी डाडो भलो गानो आ है और उन खा अलावा मिदड़ी कहती है कि जब सुबह सुबह मूड खराब हो जाए तो सारा दिन खराब ही रहता है ऐसा क्यों भला छो तो डी जो चवंदा ना आगाज सुठो थियण घुर्जे अगर आगाज सुठो न थींदो तो जाहिर सी गाल अंजाम भी सुठो रहंदो।

आओ हकीकत अथव बस हाणे तव्हां पाण सोणा थी वञो नी तव्हां पाण डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सोणा थी वञो पोइ कंहिंखे बि लिफ्ट न कराइजो अला और चाचा खालिद कहती आहे की होस्टिंग बहुत अच्छी है पब्लिक को मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए अच्छा अली मुर्तजा आ चुके हैं कहते सलाम हाउ इज यू मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं और कहाँ गुमसुम हैं मोहम्मद वीरन जखरानिया में सुन रहे हैं जेकब आबासी भाईजान आपको वेलकम कहा जाता है किशोर भाई कहते हैं पेज के डॉक्टर डा वठी वनो पेज के या तवांगे अशफा कहते हैं डिंगो आ गोट तुंजो डिंगिया जात प्यारा माय फेवरेट सॉन्ग अल्लाह जय बुदा अच्छा स्मार्टो गोपां कहते हैं टॉपिक संडे का नाम किसी एक दिन देखकर डिसाइड नहीं हुआ था लोगों ने वक्त को दिनों के साइकिल में डिवाइड किया और 7 दिन का वीक बनाया और इन 7 दिनों को अलग अलग नाम दिए गए इसीलिए जब पहला संडे आया लोगों को पहले से पता था कि ये 7 डे साइकिल का संडे वाला डे है ओके सही सही

जी गोली मार एड़े सोने के तमा पानी सोना थी वनो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे बाबा साई गाल सिद्धी थव। अच्छा जाम ताले बस सोलंगी मोरो खास अस गड मौजूद आन अद्दी तमा के शमन चुकानो बिल्कुल बुधराईंदी तमा पाने सीट ते बैठा हो जो अली मुर्तजा केते कैफ हालु किया हबीबी अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह हबीबी गाना सुनाते हैं आपको हबीबी सब्र कीजिए हबीबी अच्छा सादिया कहती है आपका शो बड़ा जबरदस्त है आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए सादिया बताएं तो पता तो चले ये जो तुम्हारी खूबसूरती जो राज आखिर यो केड़ो राज वा शहबाज में सुन रहे हैं शहबाज हेलो मारे चले ओके जी हिदायतुल्ला कहते हैं कि वैसे आज मेरे पास मेरा दोस्त मुजम्मिल भी आपका शो सुन रहा है और आपको सलाम दे रहा है शहबाज भी ओके जी शहबाज को मुजम्मिल को और आप तीनों को वेलकम कहा जाता है और प्यारी मोमना कहती है शो नाइस है फुल फन थैंक यू वेरी मच प्यारी मोमना अच्छा हैप्पी कहती है आरजे आपने जो हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगी वसीम अब्बास हमें सुन रहे हैं वसीम अब्बास नूनारी भाई एस एन नूनारी शहदादपुर से नाइस यो थैंक यू वसीम भाई

छा जो बिल्कुल प्रोग्राम तमाम बुधंदा रहो टाइम थी आए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वापसी जल्दी मोटी तमारी अचूं था तमा गाड़ी में जो वेठा हो जो ओ ही वनी ओ ही मोटू था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई टेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो जी सोना थियो

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरत

0: महसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
3: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपका खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स 57 से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई खूबसूरत सा शो कैसे हुआ क्योंकि इसमें खूबसूरती की बातें होती है ना तो खूबसूरत सा प्रोग्राम हो गया। और इसी के साथ साथ आप लोग अगर खूबसूरत बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सी खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। अच्छा मुफ्त में नहीं मिलेगा, वो भी आपने परचेज करना पड़ेगा, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स हैं कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेंगे और डी स्किन फेस वॉश भी लेंगे, ठीक है। दोनों चीजें साथ में परचेज कीजिए और साथ में इस्तेमाल कीजिए और आपको मिलेगा ऐसा हुसन, ऐसी खूबसूरती, ऐसा निखार कि आप खुद ही कहेंगे आए हाय जस करा दी। अगर इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए जनाब, और नंबर ही आप नोट कीजिएगा 033-27-38-43-09 और दूसरा नंबर है 03-12-50-25-907। अच्छा लोग कहते हैं ना आप स्लो नंबर बताते नहीं है, हम नोट नहीं कर पाते हैं, तो इससे ज्यादा स्लो नंबर मैं नहीं बता पाती, तो ये बस सही है, इतना स्लो नंबर काफी आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ जल्दी से नंबर के ऊपर रापता कीजिए और रापता करने के फौरन बाद आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर ना अवेलेबल कराते रहिए, और इससे फायदा ये होता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होंगे तो आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लिसनर्स, आपको वेलकम कहा जाता है प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। तो जनाब कहाँ से सुन रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताइएगा।

बिना पैसे यार ताबेदार वाह वाह वाह वाह ॾाढो भलो गानो मुनव्वर मोलाई जे गाने जी कंहिं मूंखे फरमाइश कई सो ही गानो हुन खे डेडिकेट आहे ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आशिक अली मल्हा बकर अबड़ो से भाई को वेलकम कहते हैं विलेज सोनो खास केली से गुलजाली गुलबहार अली दिलबहार अली शहजाद अली सफीर खास केली प्रोग्राम आपका नाई से थैंक यू वेरी मच तमाम भाइयों को वेलकम कहा जाए

बस साईवा बस साईवा। लुबना भी हमारे साथ मौजूद है। लुबना कहती है आई लाइक सिंधी सॉन्ग्स, क्या बातें, आज मुझे लग रहा है प्रोग्राम में सारे सिंधी गाने लगाए हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तो लोगों का प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और ये हमारे साथ हैं अशफा, कहते हैं गोली मार सॉन्ग इज बेस्ट सॉन्ग, थैंक यू। अच्छा साध्या कहती आप ही में व्हाइट एज की लवली क्रीम यूज करती हूँ। ओके जी, आप यूज करती रहिए। और यार परदेसी भाई हमारे साथ मौजूद, कहती है अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस यू, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। अली मुर्तजा कहते हैं दुनिया गोल है, मैं भी गोल गोल चक्कर लगाता रहता हूँ, लाल फेरी डींदा आयो बार नंढा घुमंदा आहिनि, फिरंदा आहिनि, रांदि कंदा आहिनि, पुॼंदा असां लाल फेरी ॾियूं था उहा लाल फेरी। अच्छा आशिक खास के लिए वालेकुम अस्सलाम कहती आज वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में, नूर शाह की आवाज में नगमा मिले कीजिएगा, शुक्रिया नाचीज। आशिक खास के लिए आपको वेलकम कहा जाता है प्यारे भाई। अच्छा चनेसर थेबू भाइयों में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम यूसुफ खान, चनेसर थेबू हमारे साथ हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। अख्तियार अली सिंधी हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं प्यारे भाई को।

न बाबा खेड़ा तो हुसन की कंखा भी न घुरो बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो जैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना तो पा ही तवासन मिली वो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है डी स्किन फेस वॉश है जो तुम इस्तेमाल क्या चेहरे के सफा खूबसूरत बनाए छींदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो तुम्हें खबर है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूलो है डॉक्टर की निगरानी के अंदर बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तैयार किया वो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल है वो तुम सब कर सको था यानी कि अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव भी आए सेंसिटिव स्किन वाला मानू थोड़ो अवॉइड करना है क्रीम उनका तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सको था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो सिर्फ ब रात में तुम सफा भलो रिजल्ट देने वाली है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम सब मू लगा सको था मर्द मायू सब हणो बाबा बिन रात में रिजल्ट मिले तो आए हाय मजो अची वो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है डी स्किन फेस वॉश है डी स्किन फेस वॉश के बारे में तो तुम्हें बिल्कुल खबर आया बाबा इनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड सीरम एड थियल है जो तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कह क्लीन कीपली हाइड्रेट भी रख सो तमाम इंतहाई खूबसूरत करने वाला प्रोडक्ट है जो सफा बाबा ही प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट अव तुम इस्तेमाल कह तो अमीर वाली फीलिंग अच्छा स्टार्ट तो तुम भी चाहता तो बाबा तुम अमीरन वाला प्रोडक्ट हुजन घुर्जन तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश

मुखिया जी निदड़ी कहती है हाय फेवरेट सॉन्ग, हैप्पी कहती है दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, वाह वाह वेरी नाइस थैंक यू। ओके जी चाचा खालिद कहती आज शायद शाम वाला शो मिस हो जाए, गोइंग टू आउट साइड, कोशिश करूंगा। चलें आप कोशिश कीजिए, थैंक यू सो मच चाचा, आप इतनी परवाह करते हैं। और हिदायतुल्लाह कहते वैसे खूबसूरत तो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। हाँ बिल्कुल सही था जो असा भी दी स्किन ब्यूटी क्रीम जता अभी धार आयो। मोहम्मद जमान कितने हुआ बाबा।

कुझु न बाबा, सिर्फ़ रंग कारो थी वेंदनि, एकनी अची वेंदनि, ऐं चहिरे ते खोर सारा प्रॉब्लम्स अची वेंदा, छो त जॾहिं तव्हां कंहिंखां हसद कंदा आहियो, सड़ंदा आहियो, त पोइ तव्हांजी पंहिंजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे। सो ख़ैर टेंशन न वठो बाबा, स्किन खे सफ़ा सही सही सुहिणो सुहिणो रखो, ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु कंदा रहो।

बिल्कुल प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई टेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आपको वेलकम कहा जाता है और इसी के साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया और हमारे साथ ही जी वरियाम अली क्या कहते हैं सदरा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो एंड सलाम हो दिल से आपको वालेकुम असलाम हो आपको भी थैंक यू आप हमारे साथ

हा साईं, ॻाल्हि त ॾाढी भली आहे, पर तव्हांखे छा करिणो आहे, तव्हांखे टी स्किन प्यूरी क्रीम जो इस्तेमालु करिणो आहे। अच्छा लुबना हमारे साथ, लुबना कहती है, अच्छा लुबना ने शायरी भेजी है।

आवाज़ सही वाह, आवाज़ सही वाह, ॾाढो खूबसूरत गानो हुन सां गॾो गॾु। अच्छा, लुबना की शायरी पढ़ रहे थे। लुबना लिखती है कि एक तेरी याद जो सीने से लगा रखी है, हमने दुनिया में एक अलग दुनिया बसा रखी है, हमको मालूम नहीं चाहत के तकाजे, लेकिन तेरी बातों के सिवा हर बात भुला रखी है।

अच्छा पता नहीं क्यों ये गाना सुन रही थी तो मुझे दिया की याद आ गई। हाँ जी बहुत अच्छी लड़की ये माशाल्लाह, और चोरी चोरी हमारा शो भी सुनती है। अच्छा उन्हें खाने वाला दर्दी दिल कहती है, वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू। अच्छा वासु भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। निदली कहती लास्ट में कोई ओएसटी प्ले करना टाइम मिले तो, जो हम दोनों का फेवरेट हो, हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे, ठीक है। और हैप्पी कहती आज भाई शाम वाले प्रोग्राम में मिलते हैं, जी जी इंशाल्लाह। दर्दे दिल कहती है दिल कह रहा है चंदा बोलती जाए हम सुनते रहे बस। अल्लाह मत तेरे चारे सुनो तब कसम सा।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया हमने। ये वाला गाना हमारे लिस्ट में मौजूद है, जो कि मैं सोच रही हूँ इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे चाचा को। वैसे चाचा, आपने मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइश कर दी थी, तो मैंने सोचा मास्टर मंजूर का गाना तो चल गया ना, तो ये वाला गाना आपको डेडिकेट कर देते हैं। इसी के साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बात है जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप ऐसा वाला सीन बनता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई हम क्रीमें नहीं लगाते। अगर आप क्रीमें नहीं लगाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं, आपके पास डी स्किन फेस वॉश भी मौजूद है। फेस वॉश यूज कीजिए, अपना चेहरा अच्छे से क्लीन रखा करें और खूबसूरती ही खूबसूरती आपको मिलेगी जब आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं। तो डी स्किन फेस वॉश और साथ में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, दोनों चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लगाइए। अगर आप कोई एक चीज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

अच्छा मुजाहिद मरी के हमें सुन रहे हैं, मुजाहिद मरी कराची से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहा जाता है। और निदली कहती है क्या मस्त जिंदगी बर्बाद हो रही है, हाय हाय। मोहम्मद समान भाई कहते हैं सॉरी बुआ जी बस मसरूफियात है। चलें कोई बात नहीं, आप इजी होकर आराम से फ्री होकर हमारे प्रोग्राम में आ जाइएगा। सादिया थैंक यू सो मच, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया। हेपी आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आया। अच्छा मायरा भी हमारा शो सुन रही है, मायरा आपको भी वेलकम कहा जाए।

0: वाकई कुछ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे। वैसे जंहिंखे दिलि सां मोहबत कई वञे, जंहिंखे दिलि सां चाह ॾिनो वञे, इतराम ॾिनो वञे, प्यार ॾिनो वञे, त उन जी नाराज़गी बि सुठी लॻंदी आहे। सो बिल्कुलु तव्हां हाँ जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अली मुर्तजा कहते हैं कि चुड़ैलों को आना मना है, वे चुड़ैल कल आई थी। और लुबना कहती है हाय क्या सॉन्ग प्ले किया, अच्छा लगा ना। बिल्कुल जी, आज मैंने थोड़ी सी अपनी मनमानी कर ली, मैंने आज अपनी पसंद के गाने लगा लिए हैं। भाई गाल तो वैसे दीदी, सो सबनी की प्लेलिस्ट बनी आ है, तमा जा भी कुछ गाना हुंदा, पर तकरीबन मां कोशिश कदम तो ताकी सुठी सुठी प्लेलिस्ट बुधाई वने। सो बिल्कुल प्रोग्राम जो टाइम थियो आ खत्म, तमा का मटू दा इजाजत, वरी मुलाकात तमा से थी पई मुंजी 5 बजे वाली प्रोग्राम में। सो तमा जॉइन करना लाजमी, आई पंजो ओ हिडो सारो ख्याल रखना, किते का गलती थी हुजे तो माजरत कयूं था, केजो फीडबैक रहजी वयो आए कि नो गानो रहजी वयो था, सबनी का माजरत कयूं था। So, Moklani Nahi Babu Sin Salama Sa
1: Salama
0: Sa Bye, love you all and take care.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yulia Granular, मिट्टी जो मान वधाए।
5: पारां दहशतगर्दी जे मुकमल खात्मे ताईं ऑपरेशन रदुल फितना 3 तहत कार्रवाइयूं बिना फर्क जे जारी रखण जो असर। तुर्किया जे परदेही वज़ीर हाकान फैदान चयो त पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे जो हदफ़ ईरान न आहे, ही नेटो मुआहिदे जहिड़ो आहे। जेसि ताईं मेंबर मुल्क ते हमिलो न थींदो, ईरान समेत कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न थींदी। नेटो मुआहिदे जी शिक 5 तहत मका मुआहिदे में हिक ॿिए जी दिफ़ा जी ज़मानत ॾिनी वई। नेटो जीआं टेई मुल्क हिक वज़ारती कमेटी क़ाइमु कंदा, जंहिंजो सेक्रेटरेट सऊदी अरब में हूंदो। टेक्निकल मामला हल थियण बाद मिस्र बि दिफ़ाई मुआहिदे में शामिल थी सघे थो। पाकिस्तान खिते में अमुन ऐं तहफ़ुज़ जो ज़ामिन आहे। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक चयो त मका गॾियल दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान लाइ फ़ख़ुर जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान जी हथियारबंद फ़ौज जी महारतुनि जी दुनिया शाहिद आहे। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बि कामयाबी हासिल कंदो। तहरान जा 6 मुतालबा तस्लीम थियण ताईं आबनाह हुरमज़ न खोलियो वेंदो। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल बाकिर ज़ुल्क़दर चयो त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तम करण, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे। सफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मफ़ाहमत ते मजबूर कयो, मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त नामे तहत अमरीका खे आबनाह हुरमज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जी गॾियल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। हा भञकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईराननि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। ॾोहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवियो तब्दील न थियो आहे।

0: ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची चयो त असां जे पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं, कातिल खे माफ़ न कबो। सऊदीअ में आरामको ऑयल रिफाइनरी ते हमले जी ज़िमेवारी यमन जे हूसी ग्रुप क़बूले वरिती। हूसी ग्रुप जो चवणु आहे त सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में आरामको रिफाइनरी खे ड्रोन हमले सां निशानो बणायो वियो। हमलो सहदा ऐं हजा सूबनि में फिज़ाई हदुनि जी भञकड़ियुनि जे जवाब में कयो वियो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान। अॼु पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाहनि में पाणी जे वहिकिरे में वाध जो इम्कान ज़ाहिर कयो। बारडन जी अगवा ऐं पाणीकोट ख़िलाफ़ मेहड़ में अवामी पोरे तहरीक जी इहतजाजी रैली, धरणो कारकुननि घंटाघर चौक ते प्यादल मार्च करे धरणो हयो। अगवान जो चवण हो त सिंधुअ ते किनारा ॾियण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। सिंध में बारडन जी अगवा जे वधंदड़ वाकियनि जो नोटिस वरितो वञे। गढ़ी यासीन में आसिफ पठाण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ शहर में शटरबंद हड़ताल, धरणो। शहरी समाज जे इतिहाद ऐं महिरान शॉपकीपर्स जे सर ते ॾखण नाके खां रैली कढी वई। मुज़ाहिरनि पारां अॻूणे SHO हिदायतुल्ला निंदवाणी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी। इंडस हाईवे ते ओवरहेड साइन बोर्ड हादसनि जो सबबु बणियल। मंज़ूराबाद में रहवासियुनि जो धरणो। ॻोठाणनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। ट्रैफ़िक मुअतल। लवासन जो चवण हो त ओवरहेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणियल आहे। गाॾियुनि जी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छकाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
3: जी हा 2315525786
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियण जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राघची जो चवणु हो त असां पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं। सऊदी अरब में आरमाकोत आयल रिफाइनरी ते हमले जी ज़िमेवारी यमन जे हुसी ग्रुप क़बूले वरिती। हुसी ग्रुप जो चवणु आहे त सऊदी अरब जे शहर जाज़ान में आरामको रिफाइनरी खे ड्रोन हमले सां निशानो बणायो वियो हो। हमलो सहदा ऐं हजा सूबनि में फिज़ाई हमलनि जे भञकड़ियुनि जे जवाब में कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन रद्द फितना 3 जारी। कार्रवाई में 15 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस मस्तोंग, बोलान, वाशक, आवरान, सिबी, खुदतार, हरनई ऐं नौशकी में कार्रवाइयूं कयूं। 15 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। हथियार ऐं बारूदी मवाद हथियार।

0: पाकिस्तान खिते में अमुन ए तहफ़ जो ज़ामिन है। पेट्रोलियम वारे फाकी वजीर अली परवेज़ मलिक चयो त मका गडल दिफाई माहिदो पाकिस्तान लाइ फख्र जहिड़ी ॻाल्हि आहे। पाकिस्तान जी हथियारबंद फ़ौज जी महारतुनि जी दुनिया शाहिद आहे। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बि कामयाबी हासिल कंदो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान। अॼु पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मथां इलाइक़नि ऐं कश्मीर जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पइजी सघे थी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुल्क जे वॾनि दरियाहनि में पाणी जे वहिकिरे में वाध जो इम्कान ज़ाहिर करे छॾियो। फैज़गंज में मुबैना तौर ज़हर ॾे क़तल कयल बख़्तावर शहर जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज। औरत जे वारसनि शहरनि पकाचांग मुख चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो। सदन चवणो हो त बख़्तावर खे संदसि मुड़ुसु उस्मान ॾेर मोहम्मद अली सहुरे क़तल कयो आहे। आई जी सिंध समेत अख़्तियारी नोटिस वठी इंसाफ़ ॿारनि जी अॻवा ऐं पाणी खोट ख़िलाफ़ मेहड़ में अवामी कोरे तहरीक जी एहतजाजी रैली धरणो। कारकुननि घंटा घर चौक ते पैदल मार्च करे धरणो हुयो। अॻवाण जो चवणो हो त सिंधूअ ते कैनाल लॾण वारो फ़ैसिलो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। गढ़ी यासीन में आसिफ पठाण जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ शहर में शटरबंद हड़ताल, धरणो। शहरी समाजी इतिहाद ऐं मेहरान शॉपकीपर्स जे सॾ ते ॾखण नाके खां रैली कढी वई। मुज़ाहिरनि पारां अॻूणे एसएच हिदायत लाइ निंदवाणी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी। आला अख़्तियारनि खां क़तल में मुलविज़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। इंडस हाईवे ते ओवर हेड साइन बोर्ड हादसनि जो सबब बणियल मंज़ूराबाद में रहवासियुनि जो धरणो। ॻोठाणनि इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। ट्रैफ़िक मुअतल। रहवासियुनि जो चवणु आहे त ओवर हेड साइन बोर्ड मौत जो राकास बणियल आहिनि। टिनि महीननि दौरान टे मुसाफ़िर साइन बोर्ड सां टकराइजी हयातियूं विञाए चुका आहिनि। अख़्तियारियूं नोटिस वठनि। संगवाणी भरिसां घर मां फुर ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। ॻोठ सादिक कोसो में घर मां चोरी ख़िलाफ़ लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि इंडस हाईवे बंदि करे नारेबाज़ी कई। ॻोठाणनि जो चवणो हो त हथियारबंदि घर में दाख़िल थी घरबादनि खे यरगमाल बणण बाद फुल लुट करे फरार थी विया आहिनि। सामान वापसि करायो वञे। गढ़ी खैरो में वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज बणिजी विया। सिंध बलोचिस्तान दंग ते धरणो। चोरी ऐं फुर जे वधंदड़ वारदातुनि ख़िलाफ़ शहरनि ऐं सहाफ़नि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हुयो। रहवासियुनि जो चवणो हो त सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा जमालीअ खां फुर थियल मोटरसाइकिल समेत वारदातुनि जो नोटिस वरितो वञे। घोटकीबर सां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल ॿिनि भाइरनि जी आलिन अखियुनि सां तदफ़ीन पुलिस जूं चढ़ायूं। अशरफ ऐं शाबान घोटो जी जनाज़े निमाज़ ॻोठ गुलमोहमद घोटो में अदा कई वई। हमले में ज़ख़्मी थियल ॿिनि भाइरनि जो इलाज हलंदड़। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस जे कचे जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवायूं। जवाबदार घर खाली करे फरार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली। खुशखबरी,
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
7: जी हा, 2311-25-25-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिं जो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।

0: मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेजो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाय 2347-3241-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पकियूं छिटू लगरा लाए खुश खबरी चाहियो था अवां जे घरन जो छिटू पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
5: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
3: जी हा 2315-2575-786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: फखर जी गाला है शिजा फातिमा कौम के वादाई डींदे वाहिदे से पाकिस्तान जो वक़ार सजी दुनिया में बुलंद थो है तारिक फजल और तलाल चौधरी मूजिब ही वाहिदो मुस्लिम दुनिया के तहत उम्मीद की नई सुबह है मौलाना ताहिर शफी मक्का गड़ियल वाहिदे के मुस्लिम दुनिया की वहदत सलामती और इस्तेकाम लाए वक्त की जरूरत करार दिनो परवेज मलिक मक्को गड़ियल दिफाई वाहिदो पाकिस्तान लाए फखर है पाकिस्तान के हथियारबंद फौज की महारतन की दुनिया शाहिद है।

मक्का गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदे जो मक़सद कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ कार्रवाई न पर क़ौमी सलामती जे चैलेंजेस खे मुंहुं डि॒यण स्ट्रेटेजिक सहकार मज़बूत बणाइण ख़िते में अमन इस्तेहकाम ऐं ख़ुशहाली खे हथी वठाइण आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं परडे॒ही वज़ीर सागदार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमन ऐं तरक़ी जो ख़्वाहिशमंद आहे। मक्का मुआहिदो मुकमल दिफ़ाई मुआहिदो आहे। कंहिं बि मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुरु कयो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन अतुल फितना 3 जारी। कार्रवाई में 15 ख़ारजी मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज पश्तून बोलान वाशिक अवरान सिबी खुज़दार हरनाई ऐं नौशकी में कार्रवाईयुनि दौरान 15 दहशतगर्द मारिजी विया। कब्ज़े मां हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ। सिक्योरिटी फोर्सेज पारां दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन अतुल फितना 3 तहत कार्रवाईयूं बिना फ़र्क़ जे जारी रखण जो अज़म। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज खे भेटा पेश। मुल्क में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ दहशतगर्दी खे पाणा पटण वारे अज़म जो बि इज़हार। तेहरान जा 6 मुतालबा तस्लीम थियण ताईं अपना हुर्मुज़ न खुलंदो। ईरान जी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी सेक्रेटरी जनरल वाकर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं। मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तम करण, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे। सिफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मुफ़ाहमत ते मजबूर कयो। मुआहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे। ईरानी सदर जे तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद पेशिकियान चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश नामे तहत अमरीका खे आबना हरमुस बाबति ईरान ऐं उमान जी गडि॒यल गाइडलाइंस ते अमल करणु घुर्जे। बदकड़ीअ जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रद अमल ॾियणो पियो। दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईरानियुनि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे। दुहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवैयो तब्दील न थियो आहे। ईरान बि तयारु आहे।

ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक। ईरान जे फार्मासिकल मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवणु आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त असां जे पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं, कातिल खे माफ़ न कबो।

0: सऊदी में आरामको ऑयल रिफाइनरी ते हमले जी जिम्मेवार यमन जी हुसी ग्रुप कबूल कर वरती। हुसी ग्रुप जो चवण है त सऊदी अरब के शहर जाजान में आरामको रिफाइनरी के ड्रोन हमले से निशानो बनाया। हमलो सहदा ए हजा सूबन में फजाई हदन की भजकड़ियन के जवाब में किया। मीरपुर खास में घर अंदर फायरिंग, नारी ए नौजवान मारजी व्या। फायरिंग में नारी जी अमड़ भी जख्मी। करीम टाउन में घर अंदर फायरिंग सबब 24 वरियन जे सर सवेरा लगारी ए फैजान राजपूत मारजी व्या। नारी जे भाव जो चवण है त जवाबदारन घर में खिड़ी न्याणियन ते फायरिंग कई। एक जवाबदार फैजान पान के गोलियों हणी पेंजो अंटाणे छो। दो जवाबदार घर में बंद कर छो है। पुलिस मूजिब जै घर में वाकियो पेश आयो है उते घर भातियन दरवाजा बंद कर छा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578
5: जी हां 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मौलाना ताहिर शफी मक्का गडियल मुआहदे के मुस्लिम दुनिया की बेहतर सलामती इस्तेकाम लाइ वक्त की जरूरत करार दिनो। परवेज मलिक चयो तो मक्का गडियल दिफाई मुआहदो पाकिस्तान लाइ फख्र है। पाकिस्तान के हथियारबंद फौज की महारतन की दुनिया शाहिद है। मक्का गडियल दिफाई मुआहदे जो मकसद कें मुल्क खिलाफ कार्रवाई न पर कौमी सलामती के चैलेंजेस के मुंह दियण स्ट्रेटेजिक सहकार मजबूत पाण खत्े में अमन इस्तेकाम ए खुशहाली के हथी वठण है। नायब वज़ीर आज़म परडेही वज़ीर साकदार चयो है तो पाकिस्तान खत्े में अमन ए तरक्की जो ख्वाहिशमंद है। मक्का मुआहदो मुकम्मल दिफाई मुआहदो है। कें भी मुल्क ते हमलो टिन्ही मुल्क ते हमलो तसवर कयो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ ऑपरेशन रतुल फितना 3 जारी। कार्रवाई में 15 खारजी मारजी वा। सिक्योरिटी तरीन मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज मस्तूम गोलान वाशिक आवरान सिपी फुजदार हरनाई ए नौशकी में कार्रवाई दौरान 15 दहशतगर्द मारजी वा। कब्जे में हथियार ए बारूदी मवाद बेहद सिक्योरिटी फोर्सेज पारा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तीन ऑपरेशन रतुल फितना 3 तहत कार्रवाई बिना फर्क के जायज रखने जो अज़म। करू वज़ीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब कार्रवाई ते सिक्योरिटी फोर्सेज के भेटा पेश। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे लाए दहशतगर्दी के पाड़ा पटण वाले अज़म जो इज़हार कयो। अमरीकी नायब सदर की ईरान से गाल में अकफराई की दावा। पेंटागोन दिफाई कंपनियों के हथियार की पैदावार वधाने जो भी हुक्म दई छोड़ो। वाशिंगटन पोस्ट मूजिब ट्रंप इंतजामिया दिफाई कंपनियों के अड़ो मनसूबो टाया जैमें 21 डीहन दौरान हथियार की पैदावार में तमाम घणो इजाफो कर सकते। जेडीवीएन चयो तो छिकताण अया मुकम्मल तौर खत्म न थी है। अमरीका सिफारती माशी ए फौजी जरिया इस्तेमाल कर रो है।

पढ़ाई वजीर अब्बास इराकी चयो त ॻाल्हियूं कराईंदड़नि तरफ़ां पैगामनि जी ॾे वठि जो सिलसिलो जारी आहे. हिन खे ॻाल्हियूं नथो चई सघिजे. अपना हुर्मुज़ जी मौजूदा सूरतहाल अमरीका पारां मफ़ामती यादाश्त नामनि जी भजकड़ी जो नतीजो आहे. अपना हुर्मुज़ जी आरसी रस्ते लाइ ओमान सां माहिदे जे वेझो पहुची चुका आहियूं. तेहरान जा छह मुतालबा तस्लीम थियण ताईं अपना हुर्मुज़ न खुलंदो. ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सिक्योरिटी जनरल बाकर ज़ुल्क़दर चयो आहे त मुतालबा तस्लीम न थियण ताईं पंहिंजे मौक़िफ़ ते क़ाइम आहियूं. मुतालबनि में ईरान जा ज़ब्त थियल असां सां बहाल करण, ईरानी बंदरगाहनि जी नाकाबंदी ख़तम करण, पाबंदियुनि में नरमी, जंगी नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण ऐं ईरान ख़िलाफ़ धमकियूं बंदि करण शामिल आहे. सिफारतकारी अमरीका खे ईरान सां मुफ़ामत ते मजबूर कयो. माहिदे ते पहुचण लाइ हाणे सुठो वक़्तु आहे. ईरानी सतह जे तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस. मसूद पेशिकियान चयो इस्लामाबाद मुफ़ामत यादाश्तनामे तहत अमरीका खे अपना हुर्मुज़ बाबति ईरान ऐं ओमान जी गॾियल गाइड लाइन्स ते अमल करणु घुर्जे. हा, भजगड़ी जी सूरत में ईरान खे पंहिंजो रदि अमल ॾियणो पियो. दुश्मन ॼाणे थो त हू सिर्फ़ जंग सां ईरानियुनि खे हुकुम मञण ते मजबूर नथो करे सघे. दुहारी अमरीकी हुकूमत जो ईरान सां अञा ताईं रवैयो तब्दील न थियो आहे. ईरान बि तयारु आहे. ईरान में 40 ॾींहनि जी जंग दौरान 3,500 माण्हुनि जी शहादत जी तस्दीक. ईरान जी फॉरेंसिक मेडिसन ऑर्गेनाइजेशन जे सरबराह जो चवण आहे त ताज़नि अमरीकी हमलनि में शहीद थियलनि जो अंग अञा धार आहे. ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी चयो आहे त असां पंहिंजे शहीदनि जो रत नज़रअंदाज़ न कंदासीं. कातिल खे माफ़ न कबो.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2575-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
2: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे मां गुलाब खान भेण।

सिंधी राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा चीन पारां सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन जे लाए 2000 घर ठाहे देण जो फैसलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, मेरान हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवेन्यू ऑफिसरन मथां मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम, जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलन जो नओं टाइम टेबल मुकरर, सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरन जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंडको में नौजवान सां मुबैना ज्यादती कंदड़ पंजन जवाबदारन जा हथ बंद करे छड़िया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सघंदा, सिंध कराची ऐं नवन सूबन जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील, एराजी जो तईन मार्केट अघन सां लाज़मी करार। 5 लख टन परडेही कणक खरीदारी जी मंजूरी, मेहरान हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾिस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिं जो मक़सद सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ कानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करण आहे। तजवीज़ कयल कानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन शफाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े काबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनअती, रिहायशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेहरान हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त हीउ हाईवे शहीद बिनजराबाद, नौशरफ़िरोज़ ऐं खेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रूपियनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लगभग 2.14 अरब रूपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लगभग 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जे गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूर करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जी मंज़ूरी, इस्तेमाल न थियण जोगियो या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखत में पधराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करण ऐं पधराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवर कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं इतराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾिस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिबि शुरूआती तौर 3000 घर तामीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अदावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अंग वधी 6000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिं मां 300 मिलियन 11.80 अरब रुपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में 2 कमरा हूंदा, जिन मां 1 कमरो क्लीनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मख़सूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर, ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी।
कुल तामीर थियल इरादी 24 चौरस मीटर हूंदी। घरनि में बिजली जी अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लॻल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, ज़रूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप ऐं पाणी जी टांकी समेत बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। उन्हनि घरनि जी उमिरि 20 साल ॿुधाई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त 300 मिलियन RMB जे बजट मां 3000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वज़ीर आज़म जे हिदायत ते मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुल्तवी करे छॾी। पधराई में चयो वियो आहे त MD किट जी टेस्ट हाणे 16 अगस्त बदिरां 20 सेप्टेम्बर 2026 ते थींदी। तारीख़ तब्दील करण जो फ़ैसिलो इम्तिहान खे वधीक मुनज़िम, महफ़ूज़, शफ़ाफ़ ऐं उमेदवारनि जे लाइ आसान बणाइण जो मक़सद सां कयो वियो आहे। इम्तिहान जी तारीख़ खां पोइ ॿिया समूरा शर्त ऐं ज़ाब्ता बरक़रार रहंदा। लाड़काणे में एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत पारां PP सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियत जे रिकार्ड में मुबैना फेरफार बाबति जांच जो हुकुम। 6 हफ़्तनि अंदरि जांच रिपोर्ट तलब। हुन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिबि लाड़काणे जे एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत अॻूणे तालके नाज़िम क़ुर्बान अली अब्बासी तरफ़ां दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियतुनि जे सरकारी रिकार्ड में मुबैना फेरफार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल बाबति इल्ज़ामनि ते शुरूआती जांच जो हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर खे हिदायत कई आहे त 6 हफ़्तनि अंदरि जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार क़ुर्बान अली अब्बासी मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जी हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूणे असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौर मिल्कियत जे सरकारी रिकार्ड में फेरफार करे गैरक़ानूनी क़दम खयां। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकार्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर रिकार्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवारनि माण्हुनि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में करार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़रर करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिबि 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां ख़मीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबुह 8:30 खां 3:30 वॻे ताईं हलंदा। अहिड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलनि जो बि शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। सर्कुलर मूजिबि त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि जी पहिरीं शिफ्ट 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं सुबुह 7:30 खां 1:30 वॻे ताईं हलाई वेंदी, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ऐं हायर सेकेंडरी सुबुह जी शिफ्ट 8 खां 1:30 ताईं हूंदी। चूंडकोमी नौजवान आशिक चांडियो सां मुबैना ज्यादती, तशदुद ऐं वीडियो वायरल करण वारे मामले बाद पीर साहब पागारे वाक़े जो नोटिस वठंदे इल्ज़ाम हेठि आयल नियाज़ आरादी, इम्तियाज़ आरादी, अली नवाज़ आरादी, मीर हसन आरादी ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा आरादीअ जो हथ बंदि करे छॾियो। पुलिस नामज़द जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ वॾी नफ़रीअ सां छापा हणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त जवाबदार जे भाउ अली गुलाब आराई, हाई हाजन आरादीअ समेत 5 ते सरकार पारां ड्यूटी अटका पुलिस मथां हमले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां फरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाकई में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुरान पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु गो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख सकाफत बोली जाग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क्याम तई सिंध की सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सो रहा। अज जडे मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदे वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तई महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जाग्राफी मुस्तकबिल से गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज से जज्बात बदरा तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद से गौर थियण घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो अहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध की अवाम की ख्वाहिश के नजरअंदाज कर वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उहो अहसास पैदा थे तो संदन आवाज न तो बुधो वे तो उ सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी ए जाग्राफियाई वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ कौमन बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मानून जो शहर पिण है। सिंधी उर्दू गलायदड़ बलोच पख्तून पंजाबी बियन बिरादरीन कराची की तामीर तरक्की में पांजो किरदार अदा किया है। तें करे कराची के कें एक लासानी गुरोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी ए समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। वो भी हकीकत है त सिंध के बिन वन शहर में मुख्तलिफ बिरादरी जहा मू गजी रहा वक्त से गड शहरी आबादी वधी है। नव आबादी वजूद में आयु आन मुख्तलिफ बोलियों गलायदड़ मू एक बे में जजब पिण थे। दुनिया के बिन शहर वागुर कराची में भी शहरी आबादी की तब्दीली एक फितरी अमल है। उन तब्दीली के लासानी खौफ या सियासी तकरार के सबब बनाने बदरा हकीकत पसंद अंदाज से समझण की जरूरत है। सागे वक्त सिंध के सियासी समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वही है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफी ना है। सिंध के मुख्तलिफ सियासी समाजी दानिश्वर कॉम्परस धुरन के इख्तलाफन का मथाउ थी एक वाजे जमूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गालाइंदड़ सिंधियन समेत कराची की समूरन बिरादरी के भी वो समझण घुर्ज सिंध की वहदत कें एक बिरादरी के खिलाफ मनसूबो न है। सिंधी तारीख ए मुस्तकबिल में हर उन शहरी जो हिस्सो है जो इन धरती के पांजो घर समझे तो। अज जरूरत उन गाल है सिंध बाबत हर फैसले में सिंध की अवाम की राय आइनी हकन तारीखी हैसियतुन के नजर में रखियो वे। नवन सूबन जो सवाल हुए या कराची जो मुस्तकबिल अड़ा फैसला कें बंद कमरे में न पर अवामी रजामंदी आइनी अमल जमूरी उसूलन तहत थियण घुर्जन।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगे मां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा। चीन पारां सिंध के लेडी हेल्थ वर्करन जे लाए 2000 घर ठाहे ॾियण जो फैसलो। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील। मेहरान हाईवे ते टूल टैक्स लागू। निसार खेड़ो ऐं रेवेन्यू ऑफिसरन मथां मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार जा इल्ज़ाम। जांच जो हुकुम। तालीम खाते पारां सरकारी स्कूलन जो नओं टाइम टेबल मुकरर। सुबुह 8 खां 2:30 बजे मंझंदि ताईं स्कूल खुलियल रहंदा। पुरन जे रूहानी पेशवा पीर साहब पागार चूंड कौमी नौजवान सां मुबैना ज़्यादती कंदड़ पंजनि जवाबदारन जा हथ बंद करे छॾिया। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा। सिंध कराची ऐं नवनि सूबनि जो सवाल। सिंध जो 114 साल पुराणो रेवेन्यू कानून तब्दील। एराज़ीअ जो तइन मार्केट अघनि सां लाज़मी करार। 5 लख टन परडे॒ही कणक ख़रीदारीअ जी मंज़ूरी। मेहराण हाईवे ते टूल टैक्स लागू। उन ॾस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जे सदारत में थियल काबीना इजलास में सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 ते गौर वीचार कयो, जंहिंजो मक़सदु सदी पुराणो कॉलोनाइज़ेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912 खे सूबे में सरकारी ज़मीन जे इंतज़ाम, अलाइनमेंट ऐं इस्तेमाल जे लाइ जदीद ऐं शफ़ाफ़ कानूनी फ्रेमवर्क सां तब्दील करणु आहे। तजवीज़ कयल कानून साज़ी मार्केट ते ॿधल वैल्यूएशन, शफ़ाफ़ अवामी नीलामी जो तरीक़ो, अलाटमेंट लाइ वाज़े काबिलियत जा मयार, सख़्त इंतज़ामी शिकूं ऐं शिकायतुनि जे अज़ाले जो हिकु मौसर निज़ाम मुतारिफ़ कराए ज़मीनुनि जे गवर्नेंस में वॾे अरसे खां ईंदड़ मसलनि खे हल करणु चाहे थी। नओं फ्रेमवर्क ज़रई ज़मीन सां गॾु सनती, रिहायशी, वापारी, अवामी मक़सदनि ऐं एम्यूनिटी मनसूबनि जी ज़रूरतुनि खे बि पूरो कंदो। काबीना नवाब शाह राणीपुर मेहराण हाईवे जे 35 किलोमीटर रोड ते टूल टैक्स लागू करण जी मंज़ूरी ॾिनी। इजलास खे ॿुधायो वियो त ही हाईवे शहीद बिनजराबाद, नौशरफ़िरोज़ ऐं शेरपुर ज़िलनि खे पाण में मिलाए थी। 41 अरब रूपयनि जी लागत सां रोड खे डबल कयो पियो वञे। उन ई रोड ते रोज़ानो 22,000 खां वधीक गाॾियूं गुज़रनि थियूं। तजवीज़ कयल टूलिंग सिस्टम मां लगभग 2.14 अरब रूपया सालियानी आमदनी थियण जो इम्कान आहे। काबीना सूबे जे खुराक जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जे लाइ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ज़रिए 5 लख टन कणक दरामद करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में कणक जी कुल दस्तियाबी 4.84 ऐं सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे। लगभग 1.69 मिलियन टन खोट जो इम्कान आहे। गौर वीचार खां पोइ काबीना वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कोआर्डिनेट कयल फ्रेमवर्क तहत TCP ज़रिए 5 लख टन कणक जी दरामद जी मंज़ूरी ॾिनी। काबीना एक्साइज़ खाते जे गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऐं इंश्योरेंस निज़ाम में सुधारनि जूं तजवीज़ूं मंज़ूर करे वरितियूं। ऑफ बोर्ड ऐं तबाह थियल गाॾियुनि जी डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी जी मंज़ूरी। इस्तेमाल न थियण जोगियो या सिस्टम मां ख़ारिज थियल गाॾियुनि जा मालिक 30 सेप्टेम्बर ताईं लिखित में पधराई जमा कराइण जा पाबंद हूंदा। जुलाई 2010 खां टैक्स अदा न करण ऐं पधराई जमा न कराइण वारनि गाॾियुनि खे ऑफ रोड तसवर कयो वेंदो। रहतूं अदा न करण सबबि 60 ॾींहनि बाद गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन रद्द कई वेंदी। गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम खे वधीक शफ़ाफ़ ऐं इतराइतो बनाइण जी बि मंज़ूरी। मोटर डीलर्स वटि मटी रखण जो मुदो 12 महीननि खां वधीक न हूंदो। चीन पारां सिंध खे लेडी हेल्थ वर्करनि जे लाइ 2000 घर ठाहे ॾियण जो फ़ैसिलो। सिहत वारी वफ़ाक़ी वज़ारत पारां ट्रांसपोर्ट ऐं मरमती ख़र्च खणण जे सूरत में घरनि जो अंग वधाए 40-19 करण जी आछ। उन ॾस में सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ारत चीन तरफ़ां बोर मुतासिरनि जी बहालीअ जे लाइ ॾिनल ग्रांट मां लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ प्री फेब्रिकेटेड घरनि जी तामीर वारे मनसूबे जो जाइज़ो वरितो आहे। रिथा मूजिब शुरूआती तौर 3000 घर तामीर कया वेंदा। जेकॾहिं वफ़ाक़ी वज़ारत ऐं सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऐं अदावती ख़र्च बर्दाश्त कया त उन्हनि घरनि जो अंग वधी 6000 ताईं पहुची सघे थो। सिंध सूबे खे 4019 घर मिलण जो इम्कान आहे। दस्तावेज़ मूजिबि चीनी ग्रांट जे मजमूई रक़म 800 मिलियन RMB आहे, जंहिं मां 300 मिलियन 11 अरब 80 करोड़ रूपया RMB लेडी हेल्थ वर्करनि लाइ घरनि जे तामीर लाइ मुख़्तस कई वई आहे। चीनी वफ़द तजवीज़ ॾिनी आहे त हू प्री फेब्रिकेटेड घरनि में 2 कमरा हूंदा, जिन मां 1 कमरो क्लीनिक या तिबी ख़िदमतुनि लाइ ऐं ॿियो रिहाइश लाइ मख़सूस हूंदो। हर घर जी वेकर 3 मीटर, ड्रेग 8 मीटर ऐं ऊचाई 2.6 मीटर हूंदी।
कुल तामीर थियल एराधी 24 चौरस मीटर हूंदी। घरनि में बिजली जी अंदरूनी वायरिंग, रोशनी, भित ते लॻल पखो, बरकी साकट, प्लम्बिंग, ज़रूरी फर्नीचर, सोलर पावर सिस्टम, वाटर पंप ऐं पाणी जी टांकी समेत बुनियादी सहूलियतूं फराहम कयूं वेंदियूं। उन्हनि घरनि जी उमिरि 20 साल ॿुधाई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त 300 मिलियन RMB जे बजट मां 3000 घर तामीर थींदा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वज़ीर आज़म जे हिदायत ते मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट 2026 मुल्तवी करे छॾी। पधराई में चयो वियो आहे त MDKAT जी टेस्ट हाणे 16 अगस्त बदिरां 20 सेप्टेम्बर 2026 ते थींदी। तारीख तब्दील करण जो फैसलो इम्तिहान खे वधीक मुनज़िम, महफ़ूज़, शफ़ाफ़ ऐं उमेदवारनि जे लाइ आसान बणाइण जो मक़सद सां कयो वियो आहे। इम्तिहान जी तारीख़ खां पोइ ॿिया समूरा शर्त ऐं ज़ाब्ता बरक़रार रहंदा। लाड़काणे में एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत पारां PP सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियत जे रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार बाबति जांच जो हुकुम। 6 हफ़्तनि अंदरि जांच रिपोर्ट तलब। हुन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिब लाड़काणे जे एंटी करप्शन जी ख़ासि अदालत अॻूणे तालके नाज़िम क़ुर्बान अली अब्बासी तरफ़ां दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार करोड़ समेत ॿियनि ख़िलाफ़ मिल्कियतुनि जे सरकारी रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार ऐं अख़्तियारनि जो नाजाइज़ इस्तेमाल बाबति इल्ज़ामनि ते शुरूआती जांच जो हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रीजनल डायरेक्टर खे हिदायत कई आहे त 6 हफ़्तनि अंदरि जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश कई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार क़ुर्बान अली अब्बासी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त निसार खोड़ो जी हिदायत ते अॻूणे एडिशनल कमिश्नर, अॻूण असिस्टेंट कमिश्नर, अॻूणे मुख़्तियारकार ऐं ॿियनि लाॻापियल आफ़ीसरनि मुबैना तौर मिल्कियत जे सरकारी रिकॉर्ड में फेरफार करे गैर क़ानूनी क़दम खया। दरख़्वास्त में इस्तदा कई वई आहे त सिंध हाई कोर्ट पारां रिकॉर्ड में मुबैना फेरफार रोकण बाबति जारी कयल हुकमनि ते अमल दरामद खे यकीनी बणायो वञे ऐं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुबैना तौर रिकॉर्ड में फेरफार कंदड़ ज़िमेवारनि माण्हुनि ख़िलाफ़ कानून मूजिब कार्रवाई करे। अदालत पंहिंजे हुकुम में ई करार ॾिनो आहे त इल्ज़ाम जी हक़ीक़त मालूम करण जे लाइ मुकमल जांच ज़रूरी आहे, जंहिंखां पोइ वधीक कार्रवाई बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। तालीम खाते सिंध सरकारी स्कूलनि जो नओं टाइम टेबल मुक़रर करे छॾियो आहे। जारी कयल सर्कुलर मूजिब 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं प्राइमरी स्कूल सूमर खां ख़मीस ताईं सुबुह 8 खां 2:30 ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल जुमे ॾींहुं सुबुह जो 8 खां 1 वॻे ताईं खुलियल रहंदा, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबुह 8:30 खां मंझंदि 3 वॻे ताईं हलंदा। अहिड़ी तरह प्राइमरी डबल शिफ्ट स्कूलनि जो बि शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। सर्कुलर मूजिब त डबल शिफ्ट एलिमेंट्री, सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी स्कूलनि जी पहिरीं शिफ्ट 6 अगस्त खां 31 अगस्त ताईं सुबुह 7:30 खां मंझंदि 1:30 वॻे ताईं हलाई वेंदी, जॾहिं त 1 नवंबर खां 31 मार्च ताईं डबल शिफ्ट एलिमेंट्री ऐं हायर सेकेंडरी सुबुह जी शिफ्ट 8 खां मंझंदि 1:30 ताईं हूंदी। चूंडकोमी नौजवान आशिक चांडियो सां मुबैना ज्यादती, तशदुद ऐं वीडियो वायरल करण वारे मामले बाद पीर साहब पागारे वाक़े जो नोटिस वठंदे इल्ज़ाम हेठि आयल नियाज़ आरादी, इम्तियाज़ आरादी, अली नवाज़ आरादी, मीर हसन आरादी ऐं ग़ुलाम मुर्तज़ा आरादीअ जो हथ बंदि करे छॾियो। पुलिस नामज़द जवाबदार जी गिरफ़्तारी जे लाइ वॾी नफ़रीअ सां छापा हणी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त जवाबदार जे भाउ अली गुलाब आराई, हाई हाजन आरादीअ समेत 5 ते सरकार पारां ड्यूटी अटका पुलिस मथां हमले जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। होॾां फिरियादी अज़ीम चांडियो इंसाफ़ जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वाक़े में मुलविस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई कई वञे। ॿिए तरफ़ नामज़द जवाबदार नियाज़ आरादी क़ुरान पाक हथ में खणी पंहिंजी बेगुनाही जो इज़हार कंदे सभई इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया आहिनि। SHO सोरा यासिर खोसो राब्ते ते ॿुधायो त जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहिया आहियूं, रियायत न थींदी।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधुरुगो पाकिस्तान के नक्शे से एक सूबो न पर पांजे हजारे सालन की तारीख, सकाफत, बोली, जोग्राफी ए तहजीबी सुणप रखड़ एक तारीखी वहदत है। पाकिस्तान के क्याम की तारीख में सिंध जो किरदार भी बुनियादी अहमियत रखे तो। 1940 के करारदाद का वठी पाकिस्तान के क्याम तई सिंध की सियासी क्यादत अवाम पांजे मखसूस तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के तहरीक में हिस्सो रहा। अज जडे मुल्क में नवन सूबन के क्याम जो बहस बीहर जोर वठी रो है तदे वो सवाल सिर्फ इंतजामी विरासत तई महदूद न तो रहे। सिंध की अवाम लाए वो सवाल पांजी तारीखी वहदत वसीलन जोग्राफी मुस्तकबिल से गंढियल है। तें करे अड़ी कें भी तजवीज से जज्बात बदरा तारीखी हकीकतुन आइनी उसूलन अवामी रजामंदी के बुनियाद से गौर थियण घुर्जे। बदकिस्मती से सिंध में एक अरसे का वो एहसास वधी रो है तो सिंध के वसीलन जमीनुन पानी सामुंडी पट्टी ए खास तौर कराची बाबत फैसला सिंध अवाम के ख्वाहिश के नजरअंदाज कर क्या वन था। जैसे कें सूबे की अवाम में मुसलसल उहो एहसास पैदा थे तो संदन आवाज नथो बुधो वे तो उ सूरत हाल कें भी वफाक लाए फायदेमंद नथी थी सके। कराची इन बहस जो सब का अहम नुक्तो है। कराची सिर्फ एक मुआशी शहर न पर सिंध के तारीखी ए जोग्राफियाई वजूद जो हिस्सो है। सागे वक्त कराची मुख्तलिफ कौमन बोलियन सकाफतुन से ताल्लुक रखड़ लखे मानून जो शहर पिण है। सिंधी उर्दू गलायदड़ बलोच पख्तून पंजाबी बियन बिरादरीन कराची की तामीर तरक्की में पांजो किरदार अदा किया है। तें करे कराची के कें एक लासानी गिरोह के मिल्कियत करार दियण तारीखी समाजी हकीकतुन के महदूद करण बराबर होंद। उहो बि हकीकत आहे त सिंध जे ॿिनि वॾनि शहरनि में मुख़्तलिफ़ बिरादरीनि जा माण्हू गॾिजी रहंदा आहिनि। वक़्त सां गॾु शहरी आबादी वधी आहे, नऊं आबादियूं वजूद में आयूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू हिक ॿिए में जज़्ब पिण थिया आहिनि। दुनिया जे ॿिनि शहरनि वांगुरु कराचीअ में बि शहरी आबादीअ जी तब्दीली हिकु फितरी अमल आहे। उन तब्दीलीअ खे लासानी ख़ौफ़ या सियासी तकरार जे सबब बणाइण बदिरां हक़ीक़त पसंद अंदाज़ सां समझण जी ज़रूरत आहे। सागे वक्त सिंध के सियासी ए समाजी क्यादत की जिम्मेवारी भी तमाम वही है। रुगो एहतजाज या बयानबाजी काफी ना है। सिंध के मुख्तलिफ सियासी समाजी दानश्वर कॉम्परस धुरन के इख्तलाफन का मथाउ थी एक वाजे जमूरी पुरमन हिकमत अमली जोड़ घुर्जे। बे तरफ उर्दू गालाईदड़ सिंधियन समेत कराची के समूरन बिरादरन के भी वो समझण घुर्ज सिंध की वहदत कें एक बिरादरी के खिलाफ मनसूबो न है। सिंधी तारीख ए मुस्तकबिल में हर उन शहरी जो हिस्सो है जो इन धरती के पांजो घर समझे तो। अज जरूरत उन गाल की है तो सिंध बाबत थन्दड़ हर फैसले में सिंध की अवाम की राय आइनी हकन तारीखी हैसियतुन के नजर में रखियो वे। नवन सूबन जो सवाल हुए या कराची जो मुस्तकबिल अड़ा फैसला कें बंद कमरे में न पर अवामी रजामंदी आइनी अमल ए जमूरी उसूलन तहत थियण घुर्जन।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
6: सुनते रहो GFM 90.4

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हलंदे कोन हलंदे छा ॿुधे छोरा
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर, हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।